हनेर उसा यो सहन हो सहन उरिम पुबे चहापल एच संची सलसख सान नैनी यह चेयापल अख अरंची सलसख सान यो